आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

दृढ़ संकल्प द्वारा मेजॉरिटी पास जैसे तना के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे मन के लिए

just

Goodbye.

0: अशुद्ध भावना मिटा नहीं सकते, हर आत्मा के प्रेत दिल का सने और सहयोग अपने मन में नहीं रख सकते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

बच्चों के मन में खुशी की खुराक।

Grazie. Ma tu fai... Amen.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारिया फील करेंगे थोड़ा। फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशील
2: शहना सब बात का
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाहर के लिए साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश कोई राज है क्या होता?

0: You can use the powerful Yatka and Bonakers. Use one treasure. Baki. Kuch bhi nahi milta ho seva ka aisa nahi hai. Kuch na kuch milta hai. Lekin jama nahi hota. Kaya, kamaya, kaya aur khatam. Isliye
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

Luciano.

the sun.

Radio.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सकता है। टीचर्स वाला हो सकता है पहली लाइन, हो सकता है पांडव, हो सकता

0: हर कलम आप भी बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कलम पहले वाले हैं। इस कलम के हो कि अनेक कलम के हो, अनेक कलम के हो ना, हो हाथ उठाओ जो हर कलम वाले हैं। अच्छा, फिर तो निश्चित सर्टिफिकेट मिल गए है ना, मिल गए है ना, कि लेना है, मिल गए है ना, मिल गए है कि लेना है। नहीं, कल अब पहले मिल गए है, अभी क्या नहीं मिलेंगे, यही
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, तो समय के
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने जैसी नैनों में पवित्रता की झलक पवित्रता के दो नैनों के ताड़ी रुआनियत से चमक Bye.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: वरदान मिलते हैं। एक स्वयं स्वयं को वरदान देता जो सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए पाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं उन द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्म जीवन की मोट सदा केयरफुल और केयरफुल मोट बदलना नहीं चाहिए। रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले के कारण में आने वाले, निवारण करने वाले ठीक क्या लिया है? कंट्रस्टर होना कंट्रस्ट लिया है जब प्रकृति के मूड भी चेंज करे, प्रकृति को भी चेंज करता है ना, तो प्रकृति परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? होती है, कभी कभी होती। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठते, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं। या कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है, तो पाप कहा कंपाइंड रूम कहा गया, अलग कर दिया। कंपाइंड से अकेले हो गए, ये प्यार, ये इसको प्यार कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक। मूड ऑफ वाले बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखता है, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेलने करो, क्यों? क्यों बाप दादा का बच्चों से सभी से प्यार? बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनाता ही है। यही बाप दादा का प्यार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा चाहे नहीं है, चाहे पुराने,

be happy. Egg second me. Apne aap ko. Aur sabhi. Exit.

Síganme, la Gaia. Acha, api. Sarıdın.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Awesome.

钱。

उसको चेक करो।

host.

रिजल्ट देखो जो संकल्प किया वो कहां तक पूरा हुआ। अगर परसेंटेज भी हल्की हुई पहले उमंग बहुत होता है, पीछे थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है, वो ढीला होने नहीं देना। करके ही दिखाना है, ये दृढ़ संकल्प करना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं।

संकल्प सामने लाना, और रोज अमृत

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah. इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज चेकिंग करेंगे ना रिजल्ट, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहते हैं संस्कार के सब्जेक्ट में नंबर वन जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज शिवरात्रि पर हर एक

kesempurnaan.

Bebop, that.

такой батюга. Бабка сада, пока. Нервиген, сати, банкер. इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है, क्योंकि अभी आप निमित्त बने हुए बच्चे बने।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

said so.

कुछ प्रोफेसर जो हाथ तुम्हारे सरकमटर्न्स के परवार बहुत टेंशन में रहते हैं आजकल दुनिया में खुश कर

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चों का बाप दादा मानक के संकल्प रीड करते हैं, कई बच्चे समय अनुसार सरकमटेंस
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिक।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

दूसरा

Jakarta. Saman Samparak. Or Sivami. Or so.

तीसरा खाता है। पुण्य

सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन सभी के दिल में आगे आने वाले वर्ष के लिए Bye.

Oh, das geht.

बच्चे के लिए क्या चाहता है।

선보란 문제.

0: பண்ணி பிடித்து
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सकते हो, सकाश दे सकते।

broma babagotika. Jab bhi koi bachcha aane ne, thoda halchal mein vashri rakh, hisab kitab mein raha. Silence की शक्ति की सकाश

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ।

0: और शरद कर रही है। जमा का पुरशरत आप ही कर सकते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दे ही अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा के मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करण हार बन बाप सम्मान न्यारे और प्यारे, बाप सम्मान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज, लेकिन मैं करण हार हूं, ट्रस्टी हूं,

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये फ्रेश

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। वो देखो पशु भी होते हैं ना, अगर पालते हैं ना तो उसको दूर भी फेंक के आते हैं फिर भी आ जाते हैं, आते हैं ना। तो मानो आपने हाथ तो उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे? देखो इसकी भी विधि बताते हैं। अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, तो दे दिया ना बुराई, बुराई पाप को दे दी ना, अच्छा कोई को कोई चीज दे देती है, और फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे अपने पास कि वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय लगा है, तो वापस कर देना, बाबा मेरा बाबा अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। पाप तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। पाप को दे दो पाप, आप जानो ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो, चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना, तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाएंगे, हिम्मत नहीं छोड़ना। एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम पाप के मदद का है, ये अनुभव करके देखना। हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ भी हो, बाप साथ है, मोचने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है, बाप का साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो ना तो मौज के बजाय मोच जाते हो, मोचना नहीं, ठीक है ना? अभी भी मोचेंगे नहीं मोचेंगे क्या? अभी नहीं मोच रहे है सिद्धि, अभी मौज में हो, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना? कि मौज चली जाएंगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगा। सिर्फ सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हो, मोच भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव जहाँ बाप है वहाँ मौज ही मौज। उस साथ को इमर्ज करो, सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को चूज नहीं करते, इसीलिए मौज जाते। संगम युग मौजों का युग है या मोचने का युग है? मोच कर फिर मोचते क्यों? अभी अपने जीवन के डिक्शनरी से मोचना शब्द निकाल लो। निकाल लिया पक्का कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा? और कोई है क्या? नहीं, तो सदा मौज ही मौज है। सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो, कि थोड़ा किटकिट है ड्यूटी में? नहीं, कुछ भी हो ये पेपर पास करना है, बात नहीं है पेपर। पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ती है ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई। ये नहीं सोचो पेपर आया पास हुआ मौज मना। जब बच्चे पेपर

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये पढ़ कहता, चाहते जैसे वाणी द्वारा पार्थक्यता करते हो, वाणी का प्रभाव

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, आप बदल के दिखाना है। बदला नहीं लेना है, बदलना। पुराना स्लोगन है ये तो। नए नए रूप, रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। आप दादा अंडरलाइन कर, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी, आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है। और भी रायल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत आ रहा है समीप, उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुके, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर खुद झुक जाएंगे। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना बिट नहीं जाए। कभी भी कोई दुख दे, आप चैलेंज करते हो। हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को पाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा तो कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना, पाप को भी बहुत रीजा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्थित हो जाओ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हिम्मत सदा कायम है क्योंकि

Mastéu, fierat sangalapka. Joi matrak. Que es fiel a ti.

Tenéca. Do fiat sancalap.

0: शांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सके। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है। आपको भी अपने भाई बहनों को देख तरस तो पड़ता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे, अभी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

姐。

صدا سر جو کا

Saat va vijay banna kya mushkil.

0: sedap. Merah babak. Tofijay. Hey.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: उल्ली में क्या करते? आपने भी अपने जीवन को रंगा है, लेकिन आपका रंग कौन सा? आप सभी का रंग है पाप के संग का रंग। तो सारा समय संग के रंग में रहते हो ना, तो उन्होंने भी

पवित्रता

0: kill Kebab. Sedap Fitri. Hey Fitri Swarup. Pernah nih berta Swarup Fitri. तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्यों आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग तो जैसे परम आत्मा पवित्र होली का दूसरा अर्थ है होली हो गया जो पीता सो पीता होली तो होली करना आता है जो हो चुका वो हो चुका। भी सब की है, आप जलाते हो वो भी जलाते। फिर बनाते बिना जलाने के मनाते नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sí.

Something.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वारिस की भाषा तो समझते हैं, ना जो धन से मन से सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य में हर समय एवरेज हो, इसको कहा जाता है वारस। जिस समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वार्स क्वालिटी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से सोडियम रूप है, वेब्रेशन के रूप में रह जाता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी कभी बाबा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
3: कैसे आपकी आगे?
2: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उम्मीदें पर

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्यूटी को रायलिटी, पर्सनलिटी, रियलिटी, रायलिटी कहा जाता है। तो अपने रॉयलिटी को याद करो, अनादि रूप में भी आप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो, जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपना आदिकाल की रॉयलिटी याद करो, फिर सतयुग में जब आते हैं तो देव सिर पर रॉयलिटी का लाइट का ताज, अनादि आदि कितने रॉयलिटी है। फिर द्वापर में आओ, आपके चित्रों की रॉयलिटी और किसकी नहीं।

sub reality pavitrataki pavitrata brahman jivan ka janam sadat kar पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुना बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा इस जनवरी मास को स्पेशल

0: को संपन्न करना है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ बोल
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है, आ सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहां से है? कोई और
2: मानो लो
1: फिर लौट गए। चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर, दोनों में राय लोभ माया लाने का फल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है बहुत अच्छा निश्चय होती सेवादारी सब में अच्छा, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये राय लोभ आता कि मैं इतना कुछ करता हूं सब रूप से मदद करूं, धन से मन से धन से और जिस समय

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है चाहे चार है चाहे बारह है, लेकिन तो काफी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों

0: जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी प्रमाण एक दो में अपनापन अनुभव कर, को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना? हर एक यही सोचो, सब अपने महसूस, ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना, दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते, ये दिल की स्थिति।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा जमा कर सको उतना करते जाओ, क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जवाब पूछे बनेंगे, तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे होना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Makers of

Kami. Malaki. Kill me. Awesome.

Sim.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

Vite.

क्यों का आपसे

0: prefieren sacar la boca que un quejese con esa tu caca al bocarte para tu alena hartad a poner copi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल के लोग एक तरफ What?

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रोरियान करते हैं ना, कहते हैं बस ये थोड़ा सा उसको ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, ये थोड़ा बदली कर दो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन न वो बदलेगा न आप बदलेंगे, स्वयं को बदलेंगे तो वो भी बदल जाएंगे। कोई भी आधार नहीं रखो, ये हो तो ये हो, मुझे करना ही है। अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Ciao.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा,

परिवार से।

Mrs.

Sí.

Some.

आप सबको

なた。

0: 就是的。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

किससे भी प्रस्तुति में

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: జనం కిసోగాన్ శ్రేష్ఠమన కవిమన్ విమాన్ మే జ్యాదా మేహనత నహీ కర్ని పడతీ స్టార్ట్ కర్నా హై తో మేరా బాబా బస్ చలానా ఆతా హై నా విమాన్ జబ్ భీ కుచ్ హో మా తుఫాన్ మే పహుంచ్ జాఊ భక్తి మార్గ్ మే చార్ ధామ్ కర్నే వాలే अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं और मधुबन में भी चार धाम है तो चार धाम किए पांडव भवन में देखो चार धाम है जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना एक शांत दूसरा बाप दादा का कमरा ये सने का दाम और तीसरा झुपड़ी ये सने मिलन का दाम और चौथा हिस्ट्री हाल तो आप सभी ने चार दाम किए अभी किसी भी धाम को याद कर लेना कब उदास हो जाओ तो झुपड़ी में रोड़ियां करने आ जाना शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना और वेस्ट बहुत तेज हो बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हाल में पहुंचना समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो बाप दादा के कमरे में आ जाना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा चारों ओर की लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। This is so-

Sunny. Yeah, sing.

Chap.

Casar no quiero.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो, परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद, परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता

0: sabe de mí. Por matam sad. Har karya karada. Kitna bara bhagya hai.
1: Sad. So
0: te odovisat. Kad te odovisat. Čel te odovisat.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व की तो बात

समाचार आते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास, क्योंकि साकार में तो दादियाँ है, बाप दादा के पास तो संकल्प पहुँचते हैं। क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं? मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन, some

summer.

Ciao.

Chiu.

इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना। क्यों समय की हालत को देख रही हूं? भ्रष्टाचार में जा रहा है, श्रेष्ठाचार का जन्म।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके, ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

Yoga che abbias cardeway.

जैसे जाओ वैसे अभी अभी मना

चल नहीं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब और खुश निमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मना के बाद ये रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते is

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब किचना कहते हैं, किचना दे दो बस, अच्छी चीज नहीं दो किचना दे दो। कमजोरी कमी क्या है, किचना है ना, किचना कुर्बान करना क्या बड़ी बात। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। परिस्थिति ऐसी थी, परिस्थिति का नाम ही नहीं हुई लाने वाली। स्वस्थिति शक्तिशाली सभापति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे। फरिश्ते चमक रहे, सभी बच्चे चमके हुए दिखाई दे। अभी इसीलिए पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चला रहे हैं, पर्दा खोलो पर्दा खोलो। अपना आप ही प्लान बनाओ, बनावा प्लान देते हैं ना तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लान अपने हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलने ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है, इसीलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौने परसेंटेज में हो जाती। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो, ज्यादा भले हो कम नहीं हो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही है और फिर भी हम ही होंगे, ये निश्चय विजयी बना दे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ਮੋਹਬਤ

Il logo.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डॉक्टर्स का फर्क भी बाप दादा को सेवादारी रूप देखने में आता है। सिर्फ थोड़ा समय इस सेवा को भी देते रहो। कई डॉक्टर्स कहते हैं आपको फुर्सत नहीं होती होगी, फिर भी कितने भी बिजी हो अपना एक कार्ड जमा के रखो जिसमें ये इशारा हो, अट्रैक्शन का कोई स्लोगन हो तो, और आगे शफा चाहते हो तो ये एड्रेसेस है जहाँ आप रहते हो वहाँ की एड्रेस हो सेंटर की, यहाँ जाके अनुभव करो। कार्ड तो दे सकते, जब पर्चा लिख के देते हो ये दवाई लेना तो पर्चा देने के समय ये कार्ड भी दे दो। हो सकता है कोई को तीर लग जाए क्योंकि डॉक्टरों की बात मानते हैं, और टेंशन तो सभी को होता है, एक प्रकृति के तरफ से टेंशन, परिवार के तरफ से टेंशन और अपने मन के तरफ से भी टेंशन। तो टेंशन फ्री लाइफ की दवाई ये है। ऐसी कुछ उसको अट्रैक्शन की छोटी सी बात लिखो तो क्या होगा, आपके सेवा के खाते में तो जमा हो जाएगा ना। ऐसे कई करते भी हैं, जो नहीं करते हैं वो करो। डबल डॉक्टर हो ना, सिंगल तो रही हो, डबल डॉक्टर है तो डबल सेवा। जब पेशेंट आती है आपके पास तो पेशेंट ही आएंगे, तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं और भावना भी होती है। अगर डॉक्टर किसको कहता है ये चीज नहीं करनी है तो डर के मारे नहीं खाएंगे, और कोई गुरु कहेगा तो भी नहीं मानेंगे। तो मेडिकल वालों को सहज सेवा का साधन है, जो भी आवे उनको समय मुकरर करना पड़ता है, क्योंकि काम के समय तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसा विधि बनाओ जो पेशेंट थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, उनको एक टाइम बुला के और उनको 15 मिनट आधा घंटा भी परिचय दो तो क्या होगा। से आ जाती। ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी तक पांच विकारों के व्यर्थ संकल्प

सेवा में विशेष पाठ देने में ये कमी ये भी व्यर्थ संकल्प का विशेष ज्ञानी

違った。

0: तब समान बनना कोई मुझे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे जैसे पंप फाट डालती है ना, आवाज हो जाता है, ऐसे कोई आत्मक पंप लगाओ। एटम पंप नहीं, आत्म पंप। अच्छा बैठ जाओ, मुबारक को बोल।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: निमित्त।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सेम खुशनुमा बातें का काम है आना, ये भी समझ लो बातें नहीं आएगी, बातें आएगी लेकिन अपना लक्ष्य में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बना दी। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते, तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है ऐसे। अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सिट।

एक सेकंड, बीच बीच में निकाल, अभ्यास करो, साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ, इसके लिए समय

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है, विश्व का राज करना है ना, और राज में उस समय

संबंध में सदा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते हैं। सब टीचर्स उठो, दिल्ली वालों का पीछे। देखो कितने टीचर्स, चौथा हाल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आई हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है। बाप के टीचर्स को

Say it.

0: parte quieta. करिए ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते और कहते क्या है क्या करे। मेरे संस्कार ऐसे, संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से है? जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसे कहते हो। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया और क्या जाते है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चाहिए।

see. Practice. समय पर बहुत काम में आएगी. अभी नासिक समय नजदीक.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाली।

पवित्र है तो जीवन पवित्र, इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया गया है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे, इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन, सुना सभी ने ध्यान से।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। दूसरों का भाग्य बनाओ, भाग्य बनाने का चांस दो उनको। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं आज कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, कि ब्याह के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर आवे, हर जोन में ऑफर आवे, ये सुतई प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उनों का भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, उनों को भी चांस दो क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उनों को सेवा के साथी बनाओ, उनों को भी उमंग उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी देखते। बाप दादा नजर में है, लेकिन चांस नहीं, यह प्रैक्टिकल चांस नहीं लिए, तो ये वर्ष को निमित बनाओ, सनेही सहयोगियों को उमंग उत्साह में लाओ। लाना पड़ता है, नहीं तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कि ऐसा भी कर सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Jesse Saints.

چاروں اور اپنے شکتیوں کی سن

家中烦恼，जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणें अपना फैला सकते हैं।

स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे

c'est affreux.

0: Чоп-чоу. 10 чоу. Чоп-так-чоу.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

awesome.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा कना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं। क्यों? पाप से दिल का स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह, स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सुनई पाप का सुनई, परिवार का सुनई सुतई बन जाता। क्योंकि पाप समान है ना, तो पाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार वाले नहीं, पास नया स्वरूप बन। अपने आप से पूछो, पाप से दिल का स्नेह कि जिस समय आवश्यक समय का स्नेह वो हो गए ज्ञानी भगत। तो इस वर्ष क्या करें?

0: बड़ी बार का तो है ना, गिरे हुए को गिराओ नहीं। ओ मां को उत्साह बढ़ाओ, सुने का वायुमंडल पर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, ऐसे बच्चे

0: कुशारत हीन के वायुमंडल में नहीं आकर ओडो को भी जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Shut up. जो समझते हैं दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। अच्छा, आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर, क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है, ये नहीं निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, अब हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना, पैर से नहीं उठाना, मन से आप नहीं उठा रहे हैं।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

लगा देगा।

Absolute fidget. Yeah.

प्राप्त करते हैं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुना है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन चार सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती। धर्म राजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्म राजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की आशय चेहरा दिखाई दे, झलक दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा का ये संकल्प है कि इस शिवरात्रि पर या एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह पीछे दिनों में अपन ने परिचित अपने मोहल्ले वाले अपने दफ्तर के कार्य करने वाले साथी इन्हों को संदेश जरूर दो कि अगर बाप से वर्षा लेना है तो ले लो, ये संदेश जरूर दे दो। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहे जो कहे कि हमको अभी लास्ट में क्यों संदेश दिया, थोड़ा पहले तो देते तो आप भी कुछ बना तो लेते, नहीं तो लास्ट में तो सिर्फ अहो प्रभु कहते रहेंगे। आप आए, हमने नहीं पहचान लेना देते रहे, तो इस शिवरात्रि पर किसी भी विधि से ऐसा प्रोग्राम आपस में बनाओ जो पहचान वालों को संदेश मिल जाए, फिर राह उन्हों की तकदीर। लेकिन आपने अपना कार्य पूरा किया तो हर एक को ऐसे किसी भी रूप में उन्हों को संदेश पहुंच जाए, फिर जैसी नेचर जैसा स्वभाव उसी परमान अपने अपने तरीके से संदेश जरूर दो। बड़ा दिन है, खुशखबरी आपको सुनाते, तो ये ओलेना निकल जाए। अभी भी प्रोग्राम करते हो तो क्या कहते हैं, ऐसे भी कहती है अभी भी कि हमको तो अभी पता पड़ा आपने पहले क्यों नहीं किया, इसलिए बच्चों का बाप दादा का जन्मदिन है जो पुराने है, अपना जन्मदिन कौन सा मनाते, शिवरात्रि मनाते है ना, तो इतनों के जन्मदिन पर ये संदेश देने की मिठाई बांटो, ठीक है, बांटेंगे। हाथ उठाओ, कोई भी वंचित नहीं रहे किसी भी विधि से। फंक्शन करो या पोस्ट द्वारा भेजो, लेकिन कोई रहे नहीं, किसी भी साधन से उनको संदेश जरूर पहुंचे, वो आप आपस में रहकर तीन चार तरीके बनाओ, फर्क वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दे। पसंद है आज
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: विशेष दस पत्र

0: उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्मा अनुभव सुना है तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये सेवा कर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकता।

0: जो चाहिए वो दे सको, अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय स्व के परिवर्तन में जय सेवा के सफलता में जय हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा उत्साह भी बहुत अच्छा साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो, कभी भी स्वप्रत व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि ये नव युग है। हिम्मत रखने से उड़ने का युग वरदान युग पुरुषोत्तम युग डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रख, कोई भी कार्य आरंभ करते हो चाहे स्वपुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा के मदद द्वारा निश्चय है कि स्वपुरुषार्थ में वा सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है, इस निश्चय से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण अज्ञानी आत्मा को कितने रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो, वो है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की संजीर, मोटे मोटे बंधन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की बहुत महीन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

όσοι κλαίει. Αυγή, χωσή.

一遍。

बच्चों का।

就吃不得。Baby, take off.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अपमान को खत्म कर देते हैं। क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अपमान, श्रेष्ठ अपमान अशुद्ध बिन बिन दे अपमान को समाप्त कर देता। जैसे

Switch.

Chapter.

Joker.

a reír.

vi fotoccia.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? पाप करावन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी बहुत सहज बनेगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या? कारण हार के बजाय मैं करने वाली या वाला हूं, करण हार के बजाय अपने को करावन हार मैं कर रहा। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो ही मैं तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज खोल लेती और आ जाती। अगर करण हार तो कराने वाला अवश्य याद आएगा, कर रही हूं कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला पाप बिना करावन हार के करण हार बन नहीं सकते। डबल रोबस्ट

0: और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं है। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का उमंग उत्साह

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पांडवों का गायन क्या? पांडव सदा पांडव पति के साथ और साथी रहे, साथ भी रहे, साथी भी रहे। इसीलिए पांडवों का टाइटल क्या है? विजयी पांडव। विजय हो गई ना पांडवों की, कारण परमात्म साथ और साथी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्ची लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहां कहां तो झूठ नहीं कहते उसको, लेकिन कहते हैं, समझती है कि चतुराई से चलना पड़ता है। तो चतुराई क्या है ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलती है और ब्रह्मान रायल भाषा में कहती है, मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा नीचे आवे तो पता पड़े लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप लोगों

शक्ति धारण करने में सात शक्ति की भी आवश्यकता है। सात करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे जाते हैं। हम कुछ चलने की चतुराई आ गई, इससे नहीं चलो। एक तो को देख करके भी कभी करती है, ये ऐसे चलती है ना, तो उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे रह गए। रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। पाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे, चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? पाप से या आत्माओं से? किसे काम है? पाप से है। तो पाप के दिल में के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है। भाषण

0: Beach Dala. Perché Branchia fal pindicla leken kaccha fal kake hamesha ke liye pralabhut ka fal khatam ho jaye to alab kal ke के लिए काफी नहीं करो यहां नाम नहीं है लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहां है खुशियों का संगम

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: शरद में थकना नहीं, कोई भी छोटी मोटी बाधा आती है मदद लो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी

Ese.

Verlernen.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपस में रहे सलाह, जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Awesome.

क्यों बना साकार पाठ परिवर्तन।

0: नहीं धारण करता तो आप इतनी अल्प में यहां पहुंच नहीं पाते क्यों? के वायुमंडल की प्रांतिया इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप जल्द से जल्द बच्चों अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, देख रहे हो फास्ट गति हुई है या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट हुई तभी आप यहां पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए अच्छी तरह से।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Bye.

0: इस परिवर्तन के संकल्प को जैसे बीज को पानी देते रहते हैं ना, तो फल निकलता है। पानी भी चाहिए तो भी चाहिए, तो इस संकल्प को बीज को
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

the people.

बच्चों को याद करते हैं, ऐसे नहीं है। कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं, एक एक बच्चा

वाले नंबर 1।

इस दिन को बा

Zagire, sorry.

hurt you. Το γήμα έχω βάρ. Βάρ με γιόγκα.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दिल शिकस्त होते हैं या episode.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोता हुआ है, था और है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मेहनत से चुरा देता है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है।

0: 算的耶。
1: Sage mutkar dengi.
0: जन्म के बाद का अनुभव शरीर ने ब्राह्मण बनाया, परिवर्तन किया, अपने जन्म के आद का समय अनुभव याद है ना, ज्ञान और योद्धों

0: 死吧！算你一个小弟妹喽，都是他给你的。Men not the same, but don't think. Vese be mukti varush manarayan. Men not the same, be mukti.
1: Yes.
0: अपने समान सहज बना देगा, क्यों जिसके साथ सने है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंदा हुआ है देने के लिए। छत्तीस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रही है। अगर ट्रस्टी है, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी है, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाएंगे, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? रहता है। जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक मिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ। अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बंदा हुआ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कभी किस बात

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाती, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कामा आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सौगति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा वैज्ञानिक, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन अपना

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।